प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों

के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है।
इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार।
बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटलाइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है, तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं, तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो, तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से। दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से। दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें।
अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इंटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है।
बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स,
कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है।
नियमित पोषण, संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इंटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण, संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं?
यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई

पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी

का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है

20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। नियमित पोषण, संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का

स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटलाइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों

इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%,

ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटें, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर

नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद।

मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का

स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटलाइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, सबूत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटलाइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण,

सकता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLC TRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटलाइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।

मौजूद है। बच्चों में बुखार, बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य

नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो, स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो, तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन।

तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इंटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध

अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन, 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है।

हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। नियमित पोषण, संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में

केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन, कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण टीके शरीर को खसरा पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो

आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल्स।

मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि।

औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल हैं। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटलाइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ फटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हो जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे

से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार दो दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने

अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी, स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देता है। मां का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफ अटके हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं।

पर भी न मिटे या दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान कदम मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित दिनचर्या बनाए रखें, भरोसेमंद लोगों से जुड़े रहें, सक्रिय रहें और पर्याप्त आराम करें। अगर उदासी, चिंता या निराशा कई हफ्तों तक बनी रहती है या आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है तो किसी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। नियमित पोषण। संतुलित आहार विकास ऊर्जा और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक होता है। प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने का प्रयास करें। फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें या प्रोटीन के अन्य स्रोत। मीठे पेय पदार्थ, नमक और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें। छोटे छोटे निरंतर बदलाव स्थायी स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। मच्छर जनित बीमारियों से बचाव। मच्छर मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियां फैला सकते हैं। कीटनाशक से उपचारित मच्छरदानी के नीचे सोने घर के आसपास जमा पानी को हटाने और मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करने से आपका जोखिम कम हो जाता है। यदि आपको मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में तेज बुखार है तो जल्द से जल्द जांच और उपचार करवाएं। समय पर इलाज जीवन बचाता है। हम जानकारी कैसे सत्यापित करते हैं? यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो का हर सेगमेंट आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए दिशा निर्देशों पर आधारित होता है और प्रसारण से पहले उसकी समीक्षा की जाती है। हम मनगढ़ंत तथ्य या आंकड़े नहीं बनाते। जब हम कोई स्वास्थ्य चेतावनी साझा करते हैं तो वो एक आधिकारिक स्रोत से आती है। आप universalhealthradio.org पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ धोना। साबुन और साफ पानी से हाथ धोना बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों के हर हिस्से को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से रगड़ें, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साफ हाथों से कई तरह के संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP, द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5% द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी। WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके

विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। दस्त और ओरल रिहाइड्रेशन। दस्त छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है। निर्देशानुसार तैयार किया गया ओरल रिहाइड्रेशन घोल शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जीवन रक्षक साबित हो सकता है। बच्चे को लगातार तरल पदार्थ पिलाते रहें और उसे खाना खिलाते रहें। यदि मल में खून आए, बार बार उल्टी हो, आंखें धंसी हुई दिखें या बच्चा पानी ना पी पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नवजात शिशु को स्तनपान कराना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाने की सलाह देता है। माँ का दूध शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। दिन रात जब भी शिशु को जरूरत हो स्तनपान कराएं। यदि स्तनपान कराने में दर्द हो या शिशु का वजन न बढ़ रहा हो तो स्वास्थ्यकर्मी से सहायता लें। गर्भावस्था में खतरे के संकेत। गर्भावस्था में कुछ लक्षणों के लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें योनि से अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधली दृष्टि के साथ गंभीर सिरदर्द, तेज बुखार, पेट में तेज दर्द या शिशु की हलचल सामान्य से बहुत कम होना शामिल है। इनमें से कोई भी लक्षण होने पर तुरंत किसी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने से माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। बचपन का टीकाकरण। टीके शरीर को खसरा, पोलियो और काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। अपने बच्चे को समय पर टीके लगवाने से सर्वोत्तम सुरक्षा मिलती है और यदि कोई टीका छूट जाए तो उसकी छूटी हुई खुराकें उपलब्ध हैं। टीकों की सुरक्षा के लिए व्यापक अध्ययन और निगरानी की जाती है। अपने स्थानीय क्लिनिक से पता करें कि आपके बच्चे को कौन से टीके लगवाने हैं। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। असुरक्षित पानी पीने से दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर पानी पीने योग्य न लगे तो उसे उबालकर या किसी प्रमाणित जल शोधक या फिल्टर का उपयोग करके सुरक्षित बनाएं। उपचारित पानी को एक साफड़के हुए बर्तन में रखें। अपने पानी की सुरक्षा करना आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करता है। बच्चों में बुखार। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है और बच्चों में आम है। बच्चे को आराम दें और उसे खूब तरल पदार्थ पिलाएं। यदि बुखार 2 दिनों से अधिक समय तक रहेगा, बच्चा बहुत सुस्त हो, सांस लेने में कठिनाई हो, गर्दन में अकड़न हो, त्वचा पर ऐसे दाने हों जो दबाव डालने पर भी न मिटे, दौरे पड़ें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, चिकित्सा सलाह नहीं। ये है यूनिवर्सल हेल्थ रेडियो, आपकी भाषा में आधिकारिक स्रोतों से भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी। प्रस्तुत है आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम स्वास्थ्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन से WHO के महानिदेशक ने स्वास्थ्य प्रणाली वितरण, आपातकालीन राहत और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मजबूत सहयोग को मान्यता देने के लिए जॉर्डन का दौरा किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बयान, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वापसी की अधिसूचना पर WHO का वक्तव्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से डेविड नबारो को श्रद्धांजलि। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से दवा वापसी। स्टर्लिंग फार्मास्यूटिकल सर्विसेज LLCTRP द रिलीफ प्रोडक्ट्स इनटू जेंटल आइज, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम 0.5%, स्टेराइल आई ड्रॉप्स 0.5 द्रव वापस मंगा रही है। कारण, रोगाणुहीनता की गारंटी का अभाव। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से खाद्य उत्पाद वापसी, WFM परचेजिंग LP फ्रॉम गैरी कूप, डेमीन कैब्रीचाम और बेल्जियम कैब्रीचाम को वापस मंगा रही है। शेल्फ लाइफ 30 दिन 7 अक्टूबर 2020 तक की सभी तिथियों के लिए। कारण, अंडे का एलर्जन, अंडों से एलर्जी पैदा करने वाला तत्व अघोषित रूप से मौजूद है। तनाव से निपटना। तनाव और उदासी आम बात है और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। कुछ आसान